0: For more details, contact us 0345-923-2860, 0300-585-8481.
1: Asmani Herbal Oil, 100% organic, new hair growth, khane ke fawaid, jism ki izafi charbi aur motape ko kam kare, blood pressure aur sugar ko normal rakhe, mardana kamzori ko dur kare, hafza tez kare aur khoon ki kami ko pura kare, maide ki gas, jalan, tezabiyat, badhazmi aur maide ka dard khatam kare, bawasir khooni ubadi, qabz aur matri mein mufeed hai, malish ke fawaid, sar dard, कमर दर्द, पठों का दर्द और जोड़ों के दर्द से पाए निजात, बालों को लंबा, घना और सिया चमकदार बनाए, खुश्की और सिकरे और सर की जिल्द के दानों से निजात दिलाए, बच्चों के चलने में दुश्वारी को खत्म करे, फालिज के मरीजों और हर किस्म के जख्म के लिए भी मुफीद है, जिस्मानी थकावट, ज़हनी सुकून, हर किस्म की एलर्जी के लिए भी मुफीद है। तरीका इस्तेमाल, सुबह के वक्त निहार मुंह 2 चम्मच 1 कप पानी या दूध में मिलाकर आसमानी हर्बल तेल है जो अंदरूनी और बैरूनी तकालीफ के लिए यकसा मुफीद है। राब्ते के लिए कॉन्टेक्ट 0345-923-2860।
0: आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम कुदरती अज्जा से तैयार करदा जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम का रोजाना इस्तेमाल आप आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम आपके चेहरे से दाग धब्बे, कील मुहासे, छाइयां और आंखों के गिर्द स्याह हल्के खत्म करे, आपके चेहरे, गर्दन और हाथों की झुर्रियां खत्म करे और आपकी उम्र को छुपाए। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम में सनब्लॉक की इजाफी खसूसियात मौजूद है जो धूप के मौजूद असरात से आपके चेहरे को रखे महफूज। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की मुनफरद खुशबू और विटामिन दे आपको ताजगी का एहसास। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से 5 दिनों में पाए निखरा, शफाफ, बेदाग, गोरा चेहरा। बेहतरीन नतीजे के लिए आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से चेहरा अच्छी तरह धोकर खुश्क कर लें। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की थोड़ी सी मिकदार लेकर चेहरे पर लेप करके हल्का सा मसाज करें। सुबह उठकर आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से धो लें। आसमानी कॉस्मेटिक्स जो नाम है एतमाद का। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट 0345-923-2860 0300

0: लिमिटेड मजीद सिफर 311-20-57-26।
1: क्या आप भी चाहती हैं वो सुनहरी चमक जो सबको आपकी तरफ मुतवज्जे कर दे? तो फिर वक्त आ गया है नो टेंशन गोल्ड ब्यूटी क्रीम का। ये सिर्फ एक क्रीम नहीं, ये है जादू जो आपकी जिल्द में लाए नरमी, ताज़ा गोल्ड जैसा निखार। खालिस गोल्ड पार्टिकल्स के साथ ये जिल्द को बनाए नरम, चमकदार और पुरकशिश।

अभिषेक फ्रॉम अटक, हाउ आर यू भाई, आप कैसे हो भाई? आप मैं लव यू लॉन्ग बनाना मेहरबानी जी, दुनिया बनाना नाकाम आशिक पखेर संगे खे भाई बल मैसेज रागल दे सलाम सर संगे।

0: नहीं भैया पश्चिम नहीं आती है ना।
1: तो आप कहाँ से?
0: मैं मलिक नासिर बात कर रहा हूँ, गांव नूरपुर के मरी अटक से।
1: मरी अटक से? मरी
0: नूरपुर कर मरी अटक।
1: अला ये नाम तो बहुत लेंथी है, इसको याद कौन करेगा?
0: याद करेगा जी।
1: अच्छा अच्छा कर लेंगे इंशाल्लाह। आप रेगुलर कॉल करें तो हम आपके साथ वो कर लेंगे ना, उर्दू में भी बात कर लेंगे, हिंदी में भी बात करेंगे। ठीक है ना
0: जी? जी और सुने खरीद आपको।
1: अच्छा आपको पश्तो नहीं, आपको पश्तो समझ आ रही कि नहीं आ रही?
0: थोड़ी थोड़ी समझ आती है, बोल नहीं सकता।
1: ओह माय गॉड, चलो ठीक है समझ तो आ रही है ना?
0: जी समझ आ रही है।
1: हाँ क्या करते हैं आप?
0: सर मैं तो ड्यूटी करता हूँ अपनी जगह है, शिकारी रेत वाली जगह है ना।
1: अच्छा द्रंग पे काम करते हैं?
0: जी जी अपनी जगह है, जाती है यहाँ पे ठंडी गुजरती है, उनसे पैसे लेता हूँ।
1: हेलो आपने तो बहुत से पैसे कमाए हैं अभी।
0: जी जी
1: एक ट्रक की कितने लेते हैं आप?
0: ये ट्रक नहीं, ट्रैक्टर गाड़ी चलता है, 2000 रुपए लेते हैं, आधार हमारा होता है, आधार लीज वालों को होता है।
1: अच्छा लीज वालों को होता है। अच्छा एक दिन में कितने ट्रालियां वगैरह होता है ना यहाँ पे? अच्छा अच्छा तकरीबन 20-25 तक तो होंगे ना?
0: आप पिछले गर्मी में थी 18-20 आ जाती थी, लेकिन अभी 5-6-7 कभी 2 कभी 3 मतलब है ना।
1: अच्छा अच्छा ये लीज कितने का है? कितनी का है लीज? ड्यूरेशन क्या है?
0: लीज की 25,000 की होती है, 1,000 मलकाना होता है।
1: नहीं नहीं आपके साथ जो है ना ये लीज कितने?

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।

0: शुक्रिया। आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: यौनिम सरो का बापो राशा लेका द्रेवसो का बाप राशा लेका दुई सवाचा नेमवान वर्तम के दो त्रिदा निवाच शब
3: या लेका सेत गनी राजा दा कबाब पो मुंग बांधी डीर दी लेमू में पे हम न छोड़ कड़े दे
4: न गुल काका ता सुखरे अमीर आवले गलम मेलमनो ल कबाब पड़म
3: राजा यो कबाब मुंग सरो खरा छ दखले खवान दे वर सर खशी
4: न गुल काका जमा पाल दे मैदा के में जख्म दे और पटी बलीगी हजमा में नाराजी
3: गोरा सेबनी तो परुनी बचे और मैदा दे ब्याह खराब था नुस्खा दरता है हम उस लाड़ से आओ दो बड़ा ग्राम हर मेडिकल स्टोर या जर्नल स्टोर ना एसेट गो द मैदे सिरप रावाखला द कम इस्तेमाल ना बाद चे बदे मैदा दा सिशी चे उस पने बाज मवी
4: गुल काका मैदे उस पने न हजमई खुदा से रातकारी चे द मैदे डेर खब होतल ले जब होता था सत्रे कबाब प्राती दी गुल काका दानुम और रंगे रात ब्याह हुआ या चे सुख बदल सिरप प्राने की
3: नुमिये एसेट गोदे शिन रंग के पे मैदा जोड़ा ला और द बटाग्राम हर मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर के खप आसानिया सरा

हम हर मैदान के फाते हैं अगर अल्लाह के करम साथ रहे, हम हर मैदान के फाते हैं अगर अल्लाह के करम साथ रहे, गुजरा हुआ कल भी अपना था, आने वाला कल भी अपना है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उम्मीद हो हिले लरम चिता सुटुल बारो गरमत खुशाला सुकाला खिराजा अव खपल दगा जुन बखुंदुना तल्ला सकवाई प्रोग्राम स्पोर्ट्स का अंदर सरा ज सासु मिजबान ताजुर रहमान सासु पदराना खिदमत के द अमन रेडियो FM 88.4 प्लेटफार्म ना बिल्कुल नी अपने गगारा हाजरी मा और सासु जमा अमल कर दिया बिल्कुल द सलूर बजुना वाले तर पिंजो बजो पूरी द अमन रेडियो FM 88.4 प्लेटफार्म ना आदा प्रोग्राम के सासु सरा मल कर दिया कि द हर हफ्ते पौरज ठीक तर पिंजो बजो बिल्कुल बराहरास्ते आनंद तारीख खबर होगी नेटी खबर होगी सेप्टेम्बर दमियाश तेन दौलसमा नेटा अवकाल 12 सेप्टेम्बर 2026 और टाइम दा महल मुसरद स्टूडियो पकड़ू की शिविर तकरीबन 4:12 बिल्कुल गुरानुद्दीन को 4:12 चीरी आगा मुसरद स्टूडियो गड़ो की दा महल शिविर बिल्कुल गुरानुद्दीन को 4:12 नवाले तरा पिंजो बजो पूरे बामल दा महल रवान खुदा का प्रोग्राम के बिल्कुल आवाज नहीं मासर अजमा चिकम दगा रेडियो मन FM 88.4 बडग्राम ड्यूटी अफिसर दे इमाद जानी अगर असर हम प्रोग्राम की जगह मौजूद है चूंकि स्पोर्ट्स मंदी डीर ज्यात महारत लेरी और चूंकि स्पोर्ट्स रहो डीर ज्यादा दिलचस्पी चिदा आगा लेरी और स्पोर्ट्स बारे की हुआ मालूम चिकम दी आगा लेरी नुन रसरा अगे प्रोग्राम की चिदी आगा मिलम दी खेले कल दगा प्रोग्राम से आवाज कुमा और कल न कला रसरा यो न यो मिलम चिकम दे आगा हुआ मौजूद नुन रसरा जम का ड्यूटी ऑफिसर जिनाब इमाद जानी अगे रसर मौजूद चूंकि अगे स्पोर्ट्स मन दे डीर ज्यात कमांड तरला सकड़े रे नो अगे सर अपडेट चिकम दी आगा मौजूद है दगा शांति जंगा मालूम चिकम दी स्पोर्ट्स वाला रिलेटेड आगा बतासुल प्रोग्राम बरखा आगा जुड़ो तासुंग सर पर दगा कॉलिंग नंबर जमुंगा जानसर या 0309711899 पदा कश्मीर बंदी तासो कॉल वगैरह मुसरा कबूलिश है ग्रान और दिन को मैसेजेस कबूलिश है। कॉलिंग नंबर जमुंगा जानसर या 0309711899 0997310400 बंदी हुमा तासो कॉल

अगर कोई बंदा इस सराय कोई बंदी इस सराय जो कहे कि अच्छा क्या शो चल रहा है इमाद भाई, तो डबल शो कर रहा है, तक भी नहीं जा रहा है और फेस भाई, हाँ हाँ क्या बात है यार, आज तो सेकंड शो है, फिर कल पता नहीं वो आएगा या नहीं, तो मैं मैसेज करना चाहता हूँ।

नेक्स्ट मैच इशू वाज कपड़ा कैसा, मतलब इसका मतलब यही है कि ये लोग ये कहना चाहते हैं कि किस तरह हमें बुरखा गौन अबाया वगैरह इस्तेमाल करना चाहिए, तो जिस्म को सर से पांव तक मतलब डांग के रखे अच्छा, और पलटा ना हो कि अंदर नजर ना आए, तंग ना हो कि जिसका साइज जाहिर हो, सादा हो दिखावे वाला ना हो, मिसाल अबाया लंबा कुर्ता और बड़ा दुपट्टा अच्छा जबरदस्त, हया मतलब शर्म और इज्जत वाला अंदाज, शलने बांध करने में सब अच्छा, लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए ना पहना जाए, नीयत ये हो कि मैं अल्लाह के हुक्म के लिए पर्दा कर रही हूँ, मिसाल आवाज धीमी और नजरें नीचे अंदाज में थे मिजवा जीवा ऐसे आपने

0: क्या आप अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाएंगे? एक पैकेट, एक डील और फिर पुलिस, हथकड़ियां, अदालत और जेल, और इसके बाद बदनामी, टूटे हुए रिश्ते और बर्बाद मुस्तकबिल। मंशियात का कारोबार किसी को कामयाब नहीं बनाता, ये सिर्फ दो चीजें देता है, जेल और बर्बादी। अपनी जिंदगी को जुर्म की कहानी नहीं, कामयाबी की मिसाल बनाए।
1: एक ख्वाब, एक मंजिल, मंशियात से पार, पाकिस्तान।
2: تاسو اوري ریڈیو امن، ریڈیو امن، د امن آواز، ستاسو آواز.

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।